इन्हें ज्यादा देर तक धूप में रहने से गुरेज करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के अलावा प्रोफेसर डॉक्टर दिमरजी का कहना है कि बीमारी के खिलाफ जंग में बाकायदा चेकअप की भी बहुत ज्यादा अहमियत है और खास तौर पर खतरे के दायरे में आने वाले अफराद को अपने टेस्ट मुअख्खर नहीं करने चाहिए। तुर्की में छाती, बड़ी आंत और रहम के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग के प्रोग्रामों के फैलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दर्ज ज़ेल बातों का जिक्र किया। कैंसर की बरवक्त तशखीस, स्क्रीनिंग और तालीमी मराकज हमारे मुल्क के तकरीबन हर जिले में मौजूद हैं। उन मराकज से रुजू करना जरूरी है। जब हम वहां जाते हैं तो स्क्रीनिंग के तरीकों से कैंसर की तशखीस बहुत इब्तदाई मरहले में हो जाती है। बरवक्त तशखीस जान बचाती है का नारा 100% सच है, क्योंकि हमारे मरीजों का जिंदा रहना इस बात पर मुनहसर होता है कि जब वो हमारे पास आते हैं तो उनकी बीमारी किस स्टेज पर है। तो किस शख्स को किस किस्म के कैंसर के लिए और कितने अरसे बाद चेकअप करवाना चाहिए, इस सवाल पर प्रोफेसर डॉक्टर दिमरजी का जवाब सबके लिए एक संजीदा तनबीह की हैसियत रखता है। खवातीन में 40 साल की उम्र के बाद साल में एक या दो बार मैमोग्राफी होनी चाहिए। मैमोग्राफी तिब्बी प्रैक्टिस में कैंसर से होने वाली अमवात को कम करने वाला सबसे अहम स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके जरिए हम इब्तदाई तशखीस कर सकते हैं। इसी तरह रहम के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर करवाई जाने वाली स्क्रीनिंग है। बड़ी आंत के कैंसर के लिए 50 साल की उम्र के बाद हर 10 साल बाद एक बार कोलोनोस्कोपी यानी पूरी बड़ी आंत का मुआयना या हर 5 साल बाद बड़ी आंत के इब्तदाई हिस्से तक का मुआयना काफी है। इस उम्र के ग्रुप में फुजले में छुपे हुए खून का टेस्ट भी बाकायदगी से किया जा सकता है। इब्तदाई मरहले में इलाज की कामयाबी का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। इस बात का जिक्र करते हुए कि कैंसर के इलाज में खास तौर पर हालिया सालों में अहम पेशरफ्त हुई है, प्रोफेसर डॉक्टर दिमरजी कहते हैं कि इब्तदाई मराहिल में कामयाबी की शरह काफी हद तक बढ़ गई है। फेफड़ों के आखिरी स्टेज के कैंसर में 2010 में 5 साल मुकम्मल होने पर सिर्फ 4% मरीज जिंदा बचते थे, जबकि आज इम्यूनोथेरेपी की बदौलत मरीजों के एक मखसूस ग्रुप में ये शरह 30-35% तक पहुंच चुकी है, यानी हर 3 में से एक मरीज 5 साल से ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकता है। जड़ी बूटियों वाली मसनूआत इलाज पर मनफी असर डाल सकती हैं। कैंसर का इलाज एक तवील और मुश्किल अमल है। इस अमल के दौरान कुछ मरीज जड़ी बूटियों की मसनूआत की तरफ माइल हो जाते हैं। ताहम आम तासुर के बरअक्स ये सूरत हाल इलाज के अमल को नुकसान पहुँचा सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर दिमरजी इस मामले की वजाहत यूं करते हैं। कैंसर की तशखीस पाने वाले हमारे बहुत से मरीज नेक नियति के साथ जड़ी बूटियों की मसनूआत की तरफ रागिब होते हैं, लेकिन हर वो चीज जो कुदरती हो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती। उसकी बेहतरीन मिसाल पानी है। अगर आप पानी की मकदार हद से ज्यादा बढ़ा दें तो वो पानी की मसमूमियत से इंसान को मार सकता है। लिहाजा किसी चीज का कुदरती होना खुद ब खुद ये माने नहीं रखता कि वो इंसानी सेहत को फायदा पहुंचाएगी। इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसा कोई मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि जड़ी बूटियों की मसनूआत कैंसर का इलाज करती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर दिमरजी बताते हैं कि कुछ मसनूआत सिर्फ इलाज की वजह से होने वाले ज़ेली असरात को कम कर सकती हैं। वो कहते हैं कि असल खतरा उस वक्त पैदा होता है जब ये मसनूआत डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल की जाए। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे मरीजों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाती है और मरीज को फायदा पहुंचा सकती है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन बशर्ते कि वो महफूज और साइंसी बुनियादों पर हो। प्रोफेसर डॉक्टर दिमरजी ने यह कहते हुए अपनी बात मुकम्मल की कि बगैर कंट्रोल के इस्तेमाल की जाने वाली हर्बल मसनूआत संगीन साइड इफेक्ट्स का सबब बन सकती हैं और ये इलाज के अमल को भी मनफी तौर पर मुतासर कर सकती हैं। ये उन अद्वियात के इस्तेमाल में रुकावट बन सकती हैं जो हमें आम तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। मजीद ये कि कुछ जड़ी बूटियां मुदाफियती निज़ाम को दबा देती हैं, हालांकि हम अपने जदीद इलाज में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनोथेरेपी ऐसी अद्वियात हैं जो मुदाफियत के निज़ाम को मजबूत बनाकर कैंसर के खुलियात से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। अगर आप दूसरी तरफ से जड़ी बूटियों की मसनूआत के जरिए अपने मुदाफियती निज़ाम को दबा देंगे तो बदकिस्मती से उन अद्वियात की इफादियत कम हो जाती है। कैंसर से बचने के तरीके मौजूद हैं और ये तरीके बिल्कुल वाज़े हैं। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, बाकायदा चेकअप और बाशऊर रवैये